राम सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए कहु नानक सुंदरे मना ते सिमरत गत होए जे सिमरत गत पाई है ते भजरे तै मीत कहु नानक सुंदरे मना औद घटत है नीत पांच तत् को तन रचियो जानो चतर सुजान जिह ते उपजयो नानक लीन तहे मैं महान घट घट मैं हर जू बसै संतन कहो पुकार कहो नानक ते भज मना पौन दे उतरे पार सुख दुख जे परसै नहीं लोभ मोह अभिमान कहो नानक सुनरे मना सो मूर्त भगवान उस्तत निंदया नाहे जे कंचन लोहो समान कहो नानक सुनरे मना मुकताहे तै जान हर खसोग जाकै नहीं बैरी मीत समान कहो नानक सुनरे मना मुकताहे तै जान पै काहू को देत नह नह पै मान त्यान कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान जिह विखिया सगली तजी लियो भेख बैराग कहो नानक सुन रे मना ते नर माथे भाग जिह माया ममता तजी सब ते भयो उदास कहो नानक सुन रे मना ते कट ब्रह्म निवास जे प्राणी हो मैं तजी करता राम पछान कहो नानक वो मुक्त नर ए मन साची मान पहनासन दुरमत हरन कल मैं हर को नाम निस्दिन जो नानक भजै सफल होए ते काम जे बागुण गोविंद पजो करन सुनो हर नाम कहो नानक सुन रे मना पर न जम कै ताम जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार कहो नानक आपन तरह और न लेते उधार ज्यो सुपना यार पेखना ऐसे जग को जान इन मैं कच साचो नहीं नानक बिन भगवान निस्दिन माया कारने प्राणी डोलत नीत कोटन मैं नानक कौ नारायण जे चीत जैसे जल ते बुध बुदा उपजह बिन सैनीत जग रचना तैसे रची कहु नानक सुन मीत प्राणी कशु न चेताई मद माया कै अंद कहो नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद जो सो को चाहे सदा शरण राम की ले कहो नानक सुंदरे मना दुर्लभ मानुख दे माया कारण तावही मूर्ख लोग अजान कहो नानक बिन हर भजन बिरता जन्म सिरान जो प्राणी निस्दन भजै रूप राम ते जान हर जन हरे अंतर नहीं नानक साची मान मन माया मैं फद रहो विसरियो गोविंद नाम कहो नानक बिन हर भजन जीवन कौने काम प्राणी राम न चेताई मद माया कै अंध कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद सुख मैं बहु संगी पए दुख मैं संग न कोए कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए जन्म जन्म भरमत फिरियो मिट्यो न जम को त्रास कहो नानक हर भज मना निरपै पावै बास जतन बहुत मैं कर रहे हूँ मिट्यो न मन को मान दुरमत स्यों नानक फदेओ राख लिहो भगवान बाल जवानी अर बिरद फुन तीनी अवस्था जान कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सभी
अभिमान। करनो हो तो सो ना कियो, परे हो लोभ के फंद। नानक समय हो रम गयो, अब क्यों रोबते अंध। मन माया में रम रहो, निकसत नाहिन मीत। नानक मूर्त चितर ज्यो, शाड़त नाहिन पीत। नर चाहत कछे और की और पई। चितबतरे उठ गौर, नानक फासी गल परी। जतन बहुत सुके किए, दुखो कियो न कोए। कहो नानक सुनरे मना, हर पावे सो होए। जगत पिखारी फिरत है, सबको दाता राम। कहो नानक मन सिमरते, पूर्ण होवे काम। झूठे मान कहाँ करें, जग सुपने ज्यों जान। इनमें कछ तेरो नहीं, नानक कहो बखान। गर्व करत है देह को, बिन सह छिन में मीत। जे प्राणी हर जस कहो, नानक ते जग जीत। जे कट सिमरन राम को, सो नर मुक्ता जान। ते नर हरे अंतर नहीं, नानक साची मान। एक भगत भगवान, जे प्राणी कह नाहे मान। जैसे सूकर सुवान, नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गृह ज्यों सदा, स्वान तत नहीं नित। नानक हे बिद हर पजो, एक मन होए एक चित। तीर्थ वरत अरदान कर, मन में तरे गुमान। नानक ने फल जात ते, ज्यो कुंचर इशनान। सिर कंप्यो पग ढग मगै, नैन ज्योत ते हीन। कहो नानक हे बिद पई, तहु नहर रसलीन।

थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पइयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका हुई उधारो एह वस्त तजी न जाई नित नित रखो रितारो तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो सलोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग कितोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वै हरे आ तरस पया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वै हरे आ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलापै अठो नंदन प्रथम राग भैरो वै करही पंच रागनी संग उच्चरही प्रथम भैरवी बिलावली पुनिया की गावै बंगली पुनः असलेखी की पही बारी ये भैरों की पंचो नारी पंचम हरक दिशाक सुना वह बंगाल मद माधव गावह ललित बिलावल गावही अपनी अपनी भांत अष्टपुत्र भैरव कहे गावै गायन पात्र द्वितीया माल कौसके लापै संग रागनी पंचो थापै गोंड करी हरदेव गंधारी गंधारी सिहुति उचारी तनासरी हे पंचो गाई मांदरा कौसक संग लाई मारू मस्त अंग में वारा परबल चंड कौसक यो भारा खोखट यो भौरा नद गाही अष्टमाल कौसक संग लाई पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठह तान कलोल गायन तार मिला बही तेलंगी देव करी आई बसंती संधूर सुहाई सरस अहिरी लै भर जा संग लाही पंचो आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिम मंगलन सुहाए सरस बान ओवाहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र में कहे सवारी पुनि आई दीप की बारी का छेली पट मंजरी टोडी कही अलाप का मोदी ओ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतले ओ रामा कमल कुसुम चंप के नामा गौरा ओ कांदरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब श्री राग वै गावे पंचो संग बरंगन लाव वह बहरारी करनाटी धरी गवरी गावे आसा वरी ते पाछे सिंध भी अलापी श्री राग सिंह पंचो थापी सालू सारग सागर आय और गुंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खष्टो मेघ राग वै गावे पंचो संग बरंगन लावे सोरठ गोंड मलारी धुनी पुन गावे आसा गुन गुनी उच्च सुरसूहो पुनकीनी मेघ राग सिंह पंचो चीनी बैरा तर गज तर के धारा जबली तर नटे उजल तारा पुन गावे शंकर हो श्यामा मेघ

जमका डंड मूंड में लागे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। पावन बचन गुरु गरीब निवाज, धन धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन रब्बी बाणी विचों 48वां श्लोक आपने मंगलाचरण रूप दे विच पढ़िया ते सुनिया है। महाराज कहिंदे निज कर देखियो जगत में। निज दा मतलब है अपना। जगत संसार सारी जिंदगी महाराज ने उदाहरण अपनी दे के संसार दे जीवां नूं उपदेश बख्शिया है। किंदे बंदा सारी जिंदगी सब नूं अपना समझदा है, पर महाराज कहिंदे निज कर देखियो जगत में। सारी दुनिया नूं अपना समझ रिहा सी। निज कर देखियो अपना, को काहू को नाही। पर फिर पता चलिया भी इत्थे ते कोई भी किसे दा नहीं है। नानक थेरे हर भगत है, ते राखो मन माही। धन गुरु तेग बहादुर महाराज बख्शिशां दे मालक, नानक थिर भाव सदीवी कौन है। नानक थिर हर भगत है। भगत दा मतलब की रब दी बंदगी। नर मादा कोई भी उस मालक दी बंदगी कर लवे। इत्थे ना किसे तनवान ने तनवान दा नाम रहना, ते ना किसे बलवान दा। मर कहिंदे इत्थे नाम रहना, नाम रहो साधु रहो, रहो गुर गोबिंद। निज कर देखियो जगत में, को काहू को नाहे। नानक थिर हर भगत है, ते राखो मन माहे। उनू जपना किवें है, बारंबार बार प्रभ जपी है। पी अमृत एह मन तन तृपी है। मारे कहिंदे जिन्ना ने रब दी बंदगी कीती, नानक थिर हर भगत है, ते राखो मन माहे। अपने मन दे विच प्रभु दे सिमर नू चेते रख। शरीर इत्थे बनिया ते इत्थे मिट जाना है। जन्मंगता मरनम, जिहदा जन्म होया उहदी मौत अवश्य अटल है। उहदी मौत होनी होनी। जिहड़ा मकान बनिया उहने इक दिन ढह जाना है। जिहड़ा बनिया ही नहीं ते उहने ढहना की है। तो आपां सत्कारयोग बापू सुच्चा सिंह जी तिन्हां दी अंतम अरदास विच आपां इत्थे गुरु चरणां विच पहुंचे हां। भाई साहब जी दे जत्थे ने रब्बी बाणी शब्द कीर्तन द्वारा निहाल कीता है। समय दे दायरे दे विच रहिंदिआं होइआं आपां इक शब्द दी विचार करके फिर गुरु चरणां विच अरदास करांगे। भगत कबीर साहब जी दा पावन बचन आपां पढ़िआ है, नरू मरै नर कामन आवे। गौंड राग दा शब्द है भगतां की बाणी। हुण इस शब्द दी बाहरली तौर ते व्याख्या करदे हां ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਥਾਕਾਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਮਰਿਆ ਦਸ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦਸ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਕਿਹੜੇ ਦਸ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਹੱਡ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚੰਮ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ, ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਿਟਲਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜੂਨ 1984 ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਮਾਏਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੀ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
नरू मरे नर काम न आवे, पशु मरे दसका सवारे। ओही बंदा जिदे अंदरों मनुखता मर गई सी, हुण उहदे अंदरों उह जदों मनुखता दुबारे प्रगट हो गई ना, जदों पशु बिरती उहदे अंदरों खत्म हो गई, दस काज सवारे, हुण उहदे अंदर मनुखता पैदा हो गई। जिहड़ा दूजियां दा नुकसान करदा सी उह हुण दूजियां दा भला करन तुर पिया। भगत पूरन सिंह जी नूं कोई कहिंदा महापुरशो मैं तुहाडी सेवा करनी है, पंजाब जाने हाँ, ते बंदा जदों पंजाब जावे ते पिंगलवाड़े विच जरूर एक गेड़ा मार के आवे, फिर बंदे नूं पता चलदा है कि दुनिया कित्थे वसदी है। भगत जी मैं तुहाडी सेवा करनी है, उह कहिंदे जे मेरी सेवा करनी है रस्ते दे विच जे कोई कूड़ा करकट पत्थर कुछ भी पिया ना, उह चक के सैड ते कर दिया कर, बस यही मेरी सेवा। भगत जी कहिंदे यही मेरी सेवा है, क्योंकि सेवा एक प्रकार की नहीं, अनक भांत कर सेवा करी है। हुण समा नहीं, अनेक प्रकार की सेवा है। गुरु घर एक नर्सरी क्लास की तरह है, इथों सेवा सीख के आपां बाहर समाज में भी सेवा करनी है। लोड़वंदा की जिहड़े साढ़े तो पिछे रह गए ने, उन्हां नूं आपां अपने बराबर लेके आउणा है, तां कि उह भी अपने आर्थिक पक्षों जिंदगी वधिया ज्यों सकण। मर कहिंदे नरू मरे नर काम न आवे, पशु मरे दस काज सवारे। जदों हुण पशु बिरती मर गई ते हुण मनुखता बिरती पैदा हो गई, उही बंदा हुण पता नहीं किन्नियां दे काम सवारदा है। बड़े प्यारे महत्वपूर्ण बचन ने, नरू मरे नर काम न आवे, पशु मरे दस काज सवारे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, मैं क्या जानो बाबा रे। भगत कबीर साहब जी कहिंदे अपनी कीते कर्मां दी जिहड़ी हालत है, जो मैं कर्म कर रहा, शरीरक कर्म, वाचक कर्म, मानसिक कर्म, शरीर राही जो तुसी कर दे हो, माड़ा कर दे हो माड़ा कर्म, चंगा कर दे हो ते चंगा कर्म, मन दे प्रति चंगा सोच दे हो ते चंगा, माड़ा सोच दे हो ते माड़ा कर्म, वाचक कर्म, मुख नाल चंगा बोल दे हो चंगा कर्म, माड़ा बोल दे हो माड़ा कर्म, उहदा रिजल्ट नाल दी नाल ही मिलदा है। मर कहिंदे अपने कर्म की गत मैं क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे। हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे घास का पूला, निज कर देखो जगत में को काहू को नाही, नानक थिर हर भगत है ते राखो मन माहे। मर कहिंदे हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला, कहिंदे हड किवें जलदे आ, जिवें लकड़ां दी पुली जलदी है। चलो इत्थे हुण सिस्टम हो रहा, समय दे हिसाब नाल चेंज हो रहा है, पर लगदे ते सारे 5-7 मिंट ही ने। सतगुरु सचे पातशाह जी कहिंदे हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे घास का पूला। पिंडां चों आईआं सुक्का घा हुंदा है, घा दी पुली, ज्यों ही उहनूं तीली लगदी है सकिंटां विच सड़के सवाह हो जांदी है। भगत कबीर साहब जी इह सारा मौत दा दृश्य साढ़े सामने लिया के सानूं जिंदगी जिउण दा गुरबाणी तरीका दस रही है, जिहदे तों मनुख बड़ा दूर हो गया। मर कहिंदे हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे घास का पूला। भगत जी फिर की करना चाहिए, बंदा जागदा कदों है? भगत जी कहन लगे कहो कबीर तब ही नर जागे, क्योंकि जगाउण दे वास्ते खड़के दी लोड़ है। रात नूं अलार्म लाउने आ, खड़का तो नहीं हुंदा, अलार्म लाउने आ चुप करके सुते हाँ, वह खड़का करेगा तो तां जागांगे। जिन्ना चिर वह खड़का नहीं करदा असीं जागदे नहीं। भगत जी कहिंदे जम का डंड, यह जम का डंडा की है? असल में जिहड़े दुख ने, जिहड़े विकार ने, जदों बंदा उहदे विच डुब जांदा है ते महाराज कहिंदे उस तों बाद ही इहनूं जाग आउंदी है कि मेरा तां मनुखा जन्म सी। कहो कबीर तब ही नर जागया, जम का डंड मूंड में लागे। असल में सारी गुरबाणी प्यारियो सानूं जगाउंदी है। असीं शरीरक तौर पर सौ जाने, जाग पैने, असल में गुरबाणी गल सारी अंदर दी करदी। कबीर सूता क्या करे, उठ के ना जपै मुरार। इत्थे भी गल मन दी हो रही है, सारी जिंदगी तू जन्म जन्म भरमत फिरियो, मिटियो ना जम को त्रास। मारे कहिंदे पता नहीं किन्ने क जन्मां दे विचों दी तू लंघ के आ गया, पर यह डर मौत दा खत्म नहीं होया। कबीर सुता क्या करे, कहिंदे मन दे तल ते सुता पिया। उठ के ना जपै मुरार, ये मन कदों जागेगा? उठन तो भाव कदों जागेगा? एक दिन सोवन होएगो लांबे गोड़ पसार। कहिंदे एक दिन एहो जी सौनी होनी है, मुड़ के कहिंदे शरीर हलाया भी हिलना नहीं है। गुरु कृपा करे, एक है जन्म ते एक है मौत। जन्म ते मौत है जिहड़ी, इहदे विचाले जिहड़ी जगह खाली, वह है जीवन।
ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਉਂ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮਕ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਪਰਤ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्दों तांगा बहु हरी के राम मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर तां तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कह मन वसे आवाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दियां ए वडियाइया कह नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वज पंच शब्द तित कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कहो से नाम हर के लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे

जी। तिन टूटी जम की फांसी, जिन निरपो जिन हर निरपो, त्याया जी तिन का पो सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी।

सलाहन तुद जी। हर अनक अनेक अनंता, तेरी अनक करहें हर पूजा जी। तप तप हैं जप है बेअंता, तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमरत शास्त्र जी। कार किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी। जो पावे मेरे हर भगवंता,

तुद आपे भावे सोई वरते जी, तू आपे करें सोई। तुद आपे श्रेष्ठ सब पाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मेंढा साई, जो तव भावे सोई थीसी। जो तू दे सोई हम पाई, रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया। जिसनु कृपा करहें तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया। तुदे आप विछोड़या आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे। तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी, जंत सब तेरा खेल। विजोग मिल विछुड़या संजोगी मेल। जिसनु तू जाना यह सोई, जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुझ बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला।

देखा तैं डूबी अले। मन एक ना चेत समूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हों जती सती नहीं पढ़िया, मूरख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिनकी शरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा। भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया।

शरण परे की राखो शर्मा, कहो नानक हम नीच कर्मा। शरण परे की राखो शर्मा, पातशाही दसवीं कबे बाज बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रत पारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काबहु, आप हाथ दे मुहे बचावहु।

संगरेय। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम है शाड कोई अवर ना त्याहूं, जो बार चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है।

दास तुझ जो करियो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता। तुम्हो पुरी चतर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिव जो अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूतियो, जमन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जने आप सवारी। शिव गुण को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मुँह बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान है, काट काट के पट पट की जान है, जब उद करख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आ करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे। आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम, निरंकार निर्भकार निर्लंब। आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा, ताको कर पाहन अनमानत। महामूढ़ कश भेद न जानत, महादेव को कहत सदा, शिव निरंकार का छीनत न भेव, आप अपनी बुध है जेती। वर्णत भिन्न भिन्न तुह चेती, तुमरा लखा न जाय पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा, एक है रूप अनूप स्वरूपा। रंग पयो राव कही भूपा, अंडज जेरज से दज कीनी, ओत भोज खान बहुर रच दीनी, कहूँ फूल राजा हवे बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर कैठा, सगरे श्रेष्ठ दिखाए अचाम भव, आद जुगाद स्वरूप सोयम भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उभार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे आस तुझ तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे, पुरख जमन पग परे ते हारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो काल को एक बार ते आए है, ताके काल निकट नह है, रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाय निहर हूँ, ताके ताप तनक मोहर हूँ। रिद सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शाह शवै सके न कोई, एक बार जन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहि उबारा। जिन नर नाम ते हर कहा, दारद दुष्ट दोख ते रहा, खड़ग के तुम्हें शरण ते हारी, आप हाथ दे ले हो उबारी। सर्ब ठौर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लेहु बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुम रे, तब ते को आंख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न माने। सिमृत शास्त्र भेद सब बहु भेद, कहे हम एक न जाने। श्री अस पान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तो ही बखाने। दोहरा
सगल द्वार कौ छाड़ कै गहयो तुहारो द्वार, बाहे गहे कीला जस गोविंद दास तुहार। सगल द्वार कौ छाड़ कै गहयो तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती, मन बजिया वाधाइया, राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आईया, शब्दो ता गावहु हरि केरा, मन जिनी वसाया, कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना अंगीकार, ओ करे तेरा कार्य सब सवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरे सब किश है, जिस दे सो पावे सदा सिफत, सला तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसे आवाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, घर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटहु जिस दिया ए वडियाइया। कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो।

कहो। से नाम हर के लागे कहे नानक तें सुख हुआ तित घर अनहद बाजे। आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे।

बाणी। संत साजन पै सर से पूरे गुर थे जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवां। थाल विच तीन वस्तु पईयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस अधारो। जेको खावै जेको पुंचै तिसका हुए उधारो। ए वस्त तजी न जाई नित नित रख उर तारो। तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवां। तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग कीतोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई। तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया। नानक नाम मिले तां जीवा तन मन थीवे हरिया। तरस पया मेहरामत होई

पाद गंध बिन सह स्तव गंध विचलत मोई सब मैं ज्योत ज्योत है सोए तिसद चानण सब मैं चानण होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए ज्योत सुभावै सो आरती हुए हर चरण कवन मकरंद लोपित मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा कृपा जर देहे नानक सारंको होए जाते तेरे नाहीं वसारा गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बो भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हरले मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडोत पुन वड्डा हे रहाउ साकत हर साधन जानिया तनि अंतर हो मैं कंडा हे ज्यों ज्यों चले चुबै दुख पावै जमकाल सहसरे डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन मरण पव खंडा हे वनासी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख उड़ वढ़ा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाट चलो हरलाह आगै बसन सुहेला औद घटै दिन सुरैना रे मन गुरमिलका सवारी रहाउ यो संसार विकार संसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस जगाए पी आवै ओ रस कत कथा तन जानी जाको आए सोई बिहाजो हर गुर ते मन बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बहुर ना होए गो फेरा अंतर जामी पुरख वेदात श्रद्धा मन की पूरे नानक दास एह सुख मांग मुकुकार संतन की तुरे अंतर जामी पुरख वेदात श्रद्धा मन की पूरे नानक दास एह सुख मांग मोको कर संतन की तुरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुदे अग्रदास हमारी।

रसना तू अंदर सराच रही, तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए, होर कितै जिचर हरस पलै न पाए, हरस पाए पलै पीए, हरस बहुत न तुष्टा लागे आए, इहो हरस करमी पाईऐ सतगुर मिलै जिस आए, कहे नानक होर अंदर सविसरहि जां रवसै मन आए। हे शरीरा मेरिया हर तू मैं जोत रखी तां तू जग मैं आया, हर जोत रखी तुवे तां तू जग मैं आया, रापे माता पे पिता जन जीव पाए, जग दिखाया गुर प्रसादी बुझिया तो चल तो जतन दरिया। कहे नानक सृष्टि का मूल रचिया जोत राखी तां तू जग मैं आया, मन चाउ भया प्रवाह गुम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गुर मंदिर बनिया, हर गाओ मंगल ले सखिए सुख दुख न व्यापे, गुरु चरण लागे दिन सफागे अपना, पर जापे बाणी गुर शब जानी, हर नारस भोगो कह नानक प्रवाह मिलिया करण कारण जोगो। हे शरीरा मेरिया हर तुम, शरीरा मेरिया इस जग में आए कै क्या तो कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुसी आ जा तू जग में आया, जिन्हें तेरा चन रचिया सोर मन बसाया, गुर प्रसादी हर मन बसिया पूर्व लिखिया पाया, कह नानक श्री प्रवान हो जिन सतगुर संगत लाया, नेत्रों मेरे हर तुम्हें जो तरी हर बिना वरना देखो कोई, हर बिना वरना देखो कोई नदरी हर ने हलिया, हे बे संसार तुम देख दे हर का रूप है रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया जा वेख हर एक है हर बिना वरना कोई, कहे नानक ने तरां दसे सतगुर मिलिया देव दृष्ट हो, ये श्रवणो मेरे हो सचै सुनै नु पठाए, सचै सुनै नु पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस माणी, सच लख बडाणी तां कि कद कहि न जाए, कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो, सचै सुनै नु पठाए हर जियो गुफंद रखै, वाजा पौण बजाया बजाया वाजा पौण नौ द्वारे प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए पावनी, दसवां द्वार दिखाया तारा नेक रूप नव नव निध, तेरा अंतर जाई पाया, कहे नान कर प्यारे जी गो फंदर रखे वजह बन जाए, यह साचा सोहिला साचा कर गाव हो गाव तो सोहिला कर साचा जीता जा, सचो दयावे जा तो पा गुरमुख जिना बुझावे, सबना का खसम बख्शे सोजन पावे, कहे नानक सच सोहिला सच्चे कर गावे, अनद सुनो बड़भागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पहि सरसे पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहे आप हर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे, वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह, सो आओ गुरु प्यारियो आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन द्वारा आप जी नूं निहाल कर रहे हन भाई सह भाई ओंकार सिंह जी, हजूरी रागी गदरी बाबियां दे इतिहासक स्थान गुरद्वारा साहिब स्टाकटन वाले, आओ तिन्हां पासों कीर्तन श्रवण करिए जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लीन ध्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरी है कर नौनी दयावे ताए। सब थाई हई सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हई सहाय दसा पातशाह जी की जोत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन।